0: beautiful land, beautiful people. Sound moving to the next millennium. Hawk FM.
1: We're just dancing. Hey, honey.
2: ये तो अपने कपड़े उतार लिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे, देखना
3: यार।
2: कम ऑन एना, वू वू।

0: बस कीजिए, बहुत हो गया।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो
2: कर सकती है क्या तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में